0: सुंदर बैंड
1: इंग्लिश में
0: पुष्कर इन राजस्थान
2: पुष्कर डिस्ट्रिक्ट अजमेर
1: फैमिली 10 फैमिली।